अतृत खाना खाई व्यायाम शब्द करी धूमपान मदिरा बसेटु नगरी रन नियन्त्रण करी आजुक निर्णय काली जीवन अचार निशाना रूपमा सेपाटी स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो प्रोग्राम सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रत्याशी जनयुक्त जारी सन्देश।

स्तरीय पर किया। बड़ा स्तरीय स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारे प्रतिबद्धता का थी। नैर्मिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्वत उपलब्धि किए यहाँ को स्वास्थ्य सेवा में आर्थिक तरलता का ऐसी कौशल्य अस्पताल बांसगढ़ी में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध कराती अस्पताल ऐसी तेजी में सेवा चौबीस घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए। प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजोर नशा भूटू चेक जांच कर प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हार्ट जरूरी तथा जनरल सर्जरी।

बजे स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्य का ढाल हो। रेडियो पूर्णावर्ती सहकार्य स्वास्थ्य कार्य प्रत्याशी दलित संदेश।

0: वास्तविक स्वास्थ्य सेवा मनोपद की बद्धता नागरिक स्वास्थ्य पद की हमारे की बद्धता घटी वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वसुलभ रूप में वृद्धि होगी। यहाँ तक स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक बदलता करने ऐसी कौशल्य अस्पताल बांसगढ़ी में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध कराती
1: अस्पताल से दे देना सेवा
0: 24 घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए
1: प्रत्येक दिन 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से पैर छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच करी था
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हार्ट जोड़ने तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे फिटर एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध बा सुविधा सम्पन्न लैब का सेवा उपलब्ध बा शिशु को मुंह बांध बिना नशा दाग बैलक हाट द्वारा अन्य चलना बिलमेहू करना क्लास फिजियोथेरापी तथा एक थेरापी विधि में से उपचार कर दी था
0: नशा दाग बिलक बिलमेहू करके बिना पेशान फिजियोथेरापी तथा एक थेरापी से सफल उपचार कर दिए
1: 24 घंटा एम्बुलेंस का व्यवस्था करेगी असहाय नागरिक एकल महिला अनाथ बाल बालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिक होकर पूर्ण सेवा में 10% छूट की व्यवस्था करेगी कौशल्य अस्पताल प्रणाली बांसगढ़ी शाखा 5-10 कर दिया दक्षिण बाजार
0: संपर्क फोन नंबर 084400195 और 084400210 बांसगढ़ी पर दिया।

सके लाखों मुनि का जागरण अपना मुनि के पास संकेत सत्ता के जागरण और उसे मोर स्थानों के सत्ता की सराहनी भी जैसे महाराज के

कैसा मत कर तू दे सकते कारण आज तू हमें एक ही नहीं सकते हम जा रहा हर दम हर पल

संसार प्रसार रोकथाम पर संचेता वृद्धि कहै छी ना सिक्ता धर्म पानी प्रभा संग पाके पर खान रैना कृपा ओ प्रकृति शुल्क निलेख सभापति दामिशारी कर निर्देशन पूरा समाचार सामुदायिक विद्यालय में विद्यार्थी संख्या घटल पाछ निर्भर बिहार का स्थानीय प्रमुख विद्यालय समायोजन प्रक्रिया का पहल बाट यह क्रम में पास करे नगर पालिका के विद्यार्थी उपस्थिति न्यूनपन्थिकल पास विद्यालय समायोजन करना तैयारी करता नगर पालिका के तरह सामुदायिक विद्यालय में विद्यार्थी संख्या कति कर पास अना शैक्षिक सत्र से बारह विद्यालय होना समायोजन प्रक्रिया में रहना विषय में छलफल विद्यालय शिक्षा शाखा पास करे चलेगा शिक्षा मंत्रालय को संघीय सरकार का नीति अनुसार 85 कम्ती कार्यक्रम विद्यालय होना समायोजन करना व्यवस्था रहता प्रावधान अनुसार सामुदायिक विद्यालय मध्य 1200 सामुदायिक विद्यालय में विद्यार्थी संख्या कम देख पड़क से समायोजन का प्रक्रिया को बढ़ाए पड़ना देख पड़क हो पासवरी नगर पालिका भीतर 40 सामुदायिक विद्यालय एयरपोर्टिया जिला में आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्मेलन देश के 74 सामुदायिक विद्यालय मध्य चार आर्थिक वर्ष में 10 विद्यालय समायोजन करेगा जुन अंतर्गत राजापुर नगर पालिका में 5 पड़ियाताल गांव पालिका में 3 तारापोटिया नगर पालिका में 1 ओकलिया नगर पालिका में 1 विद्यालय समायोजन होगा जिला में 100 से कम विद्यार्थी संख्या लग 30,000 सामुदायिक विद्यालय तथ्यात्मक पड़ेगा बढ़ते प्रहरी बड़ा परिमाण में अवैध मोबाइल फोन नियंत्रण में रहेगा जिला प्रहरी कार्यालय प्रवक्ता के अनुसार करीब 22,67,028 रूपया बराबर का 972 थान मोबाइल सेट नियंत्रण में रहेगा तो अगले रात करीब 11:30 बजे इलाका प्रहरी कार्यालय महीना पोखर में से खंडलक प्रहरी टोली गश्ती का क्रम में पड़ियाताल गांव पालिका के कुटहाट चौक स्थित आठ से सारण सीमावर्ती क्षेत्र का वो मोबाइल नियंत्रण में रखो प्रहरी के अनुसार कुछ परिचित साइकिल में छठ पड़ा में मोबाइल लेन देन अवस्था में प्रहरी टोली देखल पास समान शुल्क फरा पास प्रहरी भारत से जांच कर लाभम उपकोडन 1-6+ की प्लाट मोबाइल 540 थानो लाभा मॉडल K7 टच की प्लाट मोबाइल 432 स्थान ख्याल पड़ना हो बरामद परिचालक मोबाइल सेट आवश्यक कार्रवाई कर राजापुर परिसर कार्यालय प्रहरिया पड़िया में बुझा देगा घटना बारे थप अनुसंधान को गिरलक जिला प्रहरी कार्यालय पड़िया में प्रहरी निरीक्षक लोकराज अवस्थी जानकारी मानव वेशखण्ड तथा ओसार प्रसार नियन्त्रण जिल्ला समितिका प्रचारी निम्चर्मा पर्टियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुवन बहादुर हमारको अध्यक्षतामा बैठक प्रचारी 8 पुण्य महत्वपूर्ण निर्णय गर्दाको माइती नेपाल पर्टियाका समन्वयमा बैठकको प्रचारीले जिल्लामा समग्र अवस्थाको जानकारी गरेकी प्रथमका लागत छलफल गर्न जना दिएका मानव वेशखण्ड तथा नियन्त्रण ओ जनक्षेत्र अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रभावका रूपमा सञ्चालन गर्न निर्णय फेदलता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैठक उपचारी जोखिम क्षेत्र नाका तथा प्रभावित समुदायमा पहिचान तयका सम्बन्धित निकायसे समन्वयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न घटना सम्बन्धी सूचना उजुरी उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका अभिलेख व्यवस्थित गर्न तथा सीमा क्षेत्रमा निगरानी हो सूचना संकलन प्रणाली सुदृढ बनाइन निर्णय गरिकन माइती नेपाल प्रक्रिया चलेनका उसैका जोखिम अनुरूप महिला बाल बालिका तथा अवलम्बनय परामर्श कानुनी सहायता सुरक्षा पुनर्स्थापनाका व्यवस्था गर्न विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उद्धार वैकलक मनन सेट विकास रोजगार तथा आय आर्जनका कार्यक्रमसे आबद्ध गरिन तथा वार्षिक कार्ययोजना प्रणाली कार्यान्वयन नियमित समीक्षा गर्न निर्णय गरिएका सँग उत्कृष्ट

0: सिंह खैनी सिखाई सोच बताई सुरक्षित परिवार
1: स्वास्थ्य कार्यालय भाग्या ऐसी जनहित में जारी संदेश।

आगामी देखिए आगामी देखिए प्रति उत्तरदायित्व सेवामुखी स्वच्छ कार्य संपादन

विभाग ने जारी कर पूर्जी का आधार में उन्हें इस शुल्क प्राप्त पत्र पड़े थे। यद्यपि विभाग का अधिकारी ने उन्हें माथि कुन प्रसंग में अनुसंधान भई हो भन्ने प्रश्न पारे छेन। एक रिपोर्ट पार्टीको कार्यक्रममा गएका बेला सुर्खेतबाट पत्र परेका पौडेललाई अनुसन्धानका लागि म्यादमार्कै आज अदालतमा पेश गरिएको थियो। अदालतले उनलाई 7 दिन ठाउँ राख्ने अनुमति दिएको सूचना अधिकारी पार्वती हितालले बीबीसीलाई बताइन्।

शिकार व फल फूल आयुर्वेदिक खाना नियमित रूप में खाए। जंक फूड कम करी संतुलित खाना खाना चाहिए। स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्य का आधार हो। रेडियो प्रभावा एफएम का सहकार्य स्वास्थ्य कार्य ने प्रत्याशी जनहित प्रदारी संदेश।